मुझे अपना बना लो करम से, मुल्तजम पर ये मांगे दुआए, अब न जाना हो घर हमको वापस, चुपके चुपके ये मांगे दुआए, मुझको अपना बना लो करम से, मुल्तजम पर ये मांगे दुआए, मुझको अपना बना लो करम से, मुल्तजम पर ये मांगे दुआए, अब न जाना हो घर हमको वापस, चुपके चुपके ये मांगे दुआए, सारे आलम में फिर फिर के या रब तेरा दर्द मोहब्बत सुनाए, सारे आलम में फिर फिर के या रब तेरा दर्द मोहब्बत सुनाए, तेरा दर्द

याद में तेरी सबको बुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लूटा दूं, खाने दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस ताद

दिन रह चुका निकम्मा, बस अब मुझे काम का बना दे। मैं कब से हूँ महवे ख्वाब गफलत, बस अब जगा दे, बस अब जगा दे। मैं कब से हूँ महवे ख्वाब गफलत, बस अब जगा दे, बस अब जगा दे।

मेरा गुनाह में आलूदा हो रहा है, रुआ रुआ बाल बाल मेरा। ये आखिरी दिन है जिंदगी के, दुरुस्त कर दे माल मेरा। ये